0: वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओ सोट महला पांजेवा, गुर का शब्द रखवारे, चौ की चौ गिरद हमारे। राम नाम लागा, जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहाउ, नानक प्रभ अविनासी। ताकि सेवन बिरथी जासी, आनंद करहे तेरे दासा। जा पूर्ण हुई आसा, बिलावल महला पांजेवा। ताती भावना लगई, पार ब्रह्म शरण आई। चो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जन बणत बनाई। राम नाम औखुंद दिया, एक काली वलाई। रहाउ राख लिए तें रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभ भय सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद, भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू न छुट है, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पांजेवा, मन में चित बो चित।

प्रगट जाए, मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती सन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए, मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवार साधार। मन्नै तारै तारे गुर सिख, मन्नै नानक पवहै न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान। पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करै विचार, करते कह करनै नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख था परखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर किता भार, धरती होर परै होर होर, तिस ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए केता तान। सवाले हो रूप केती दात, जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भख सार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करहै भार। नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोह, असंख कह है सिर भार होए। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखान। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विन नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हथ पैर तन देह, पानी धोतै उत्तर सो खेह, मूत पलीति कपड़ होए, दे साबून लईऐ ओह धोए, भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहु जाहो। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। वेन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माहो कवन, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान।

0: अनाहते जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध। संयोग वे जोग दोयकार चलावह, लेखे आवह भाग आदेश तिसह आदेश। आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई दी बाण। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्हां नदर न आवै। बहुता एहो वेदान आदेश तिसै आदेश। आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए
1: भंडार जो कुछ पाया सो एक वार, कर कर वेखै सिरजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदे तिसे आदेश। आदि नाना जुग जुग एको वेस। एक दूजी बहु लख है लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। इतराए पत पौड़ियां चढ़िया होए अकीस,

अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन मैं राम।

नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमस्तवंग नरनाथे, नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग अपंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे।

नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग।

समस्तंग प्रसिद्ध कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सदा सर्वदा रिद सिद्धंग निवासी। चरपट छंद तय प्रसाद।

के आ गंज कर में के आ पंज भर में के आ पे जलो के आ दित सोके के अब तूत बरने के विभूत करने के राजसंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक बरने के सर्वा परने के जगतन कृति है के शतरंग क्षत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूपे के अन्न

दे अगंजे अगादे सुभंग सुभंग सर्वभागे सो सर्व अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंक परनाश पृथ्वी उल परवास है। निरुक्त प्रभा सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है। निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है। चाचरी चंद तय प्रसाद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजी है अपी है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंत है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलीख है अपीख है अडाह है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है। चरपट छंद तय प्रसाद सर्वगंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वंगर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता। अरसावल संत है प्रसाद नमो नरक नासे सदेवंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग बेपूते परमाथंग परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे तिरपंगी तिरकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसांसंग शरीक है अमितो अमीक है सदेवं प्रभा अजे है अजा है। भगवती छंद त्वय परिचाद के जार जूर है के हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चराग है के कामल करीम है के राज के रहीम है के रोजी दहिंद है के राज के रहिंद है करीम उल कमाल है के हुसन उल जमाल है गनीम उल खराज है गरीब उल निवाज है। हरी फुल सकन है हिरासल फिकन है कलंक प्रनाश है समस्तुल निवास है अगुंजल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जवान है के साहिब के राय के नरकंक प्रनाश है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है मेसुल रवान है तमाम उल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल।

गंजन है और गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंक रहता है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म वस है, जस के जस है, भुजंग पर्यात छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे।

बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नात फिर लेसा समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास की ओ बख्यान सो बैठ के ऐसे ऐसे सो बैस बतायो, साच कहू सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो, काहुल पान पू तरयो सिर काहुल लिंगरे लटकायो, काहुल खेओ हर अवाची दिशा में काऊ बचा को शीस नवायो, को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो, कूर किरिया उर्जे हो सभी जग श्री भगवान को।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहसे ती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार भरियां शब्द गा

पुले सोत दारा से प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

अंतर्गत होके सत्संग जी दो तीन मिनट वास्ते अपना ने नाम नु सुनना करना जियो। जिन्ना गुरमुखां नू शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो। जिन्ना गुरमुखां नू अंतर्गत सिमरन नहीं सुनदा उन्हां ने सास ग्रास सिमरन विच ध्यान रखना जियो। श्वास अंदर नू आउंदा वाहे फील करना, श्वास बाहर नू जांदा गुरु फील करना। इस तरह सास ग्रास अंतर्गत ध्यान सिमरन विच रखना जियो। कृपा करके नेत्र बंद रखने आ, विचार नहीं लेने। विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आए। अपने विचारां तो रहत होके मन व्यतियां कागर चित करके नाम नू

पौड़ी साहिब हो दयाल, कृपा करे ता साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी, हुकम मन्या होवे पर

0: इतनी हाजिरी प्रवान करनी जी। पुल चुक दी खिमा साहब सतगुरु सोडी सुल्तान पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे गुरता गद्दी गुरपुरब दियां सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां। आप सभना संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां वल्लों गुरु दरबार की हाजिरी भर के लाए प्राप्त किए ने। सच्चे पातशाह सभना की हाजिरी प्रवान करन। आओ अगला समा ग्ञानी जी आप जी नूं दस रहे ने, प्यार सत सरवण करके लाए प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: अमृत बाणी दा कीर्तन आप संगतां नूं सरवण करा रहे सन भाई साहब भाई गुरदयाल सिंह जी। श्री खडूर साहब वालियां दा रागी जत्था अज चौथे पातशाह सोडी सुल्तान गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा गुरियाई पुरब है। उस बंद विच अज दे दीवान सज्जे हन। सारिया संगतां गुरु साहब दे गुरियाई पुरब दियां बहुत बहुत वधाइयां होण। हुण समा भाई नवदीप सिंह जी हजूरी रागी सचखंड दरबार साहब तिन्हां दे जत्थे दा है। उन्हां पासों गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करिए। धन धन बाबा फरीद साहब तिन्हां दे जन्म दिहाड़े दे संबंध विच श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होणगे कल नूं शुक्रवार नूं, अते जिन्हां दे ऐतवार नूं मेन हाल विच 9:15 भोग पाए जाणगे। सारियां संगतां दे चरणां विच बेनती आप जी ने हाजरियां भरनियां। गुरु की बाणी दा कीर्तन इतिहास सरवण करना जी। आओ बड़े प्यार नाल हुण कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गोर किनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निस्बासुर एक समान तिहान। सुनाम सुने स्वत पान डरियो, भान दास सुहास जगतर गुरु की। पारस भेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु हर सत कियो।

हर त्यावह, हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता तेरे।

चेत समूड मन हार बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या,

ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जाब उद करख।

जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केहे विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा अरंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतभुज खान बौहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाई।

दुष्ट जिते उठवा तो उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण काता जे आस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

श्री वाहे गुरु साहिब जी। जैत सरी महला चौथा, जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो, तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुन्नी देह फिर है बिन नावै, ओए खाप खाप मुए करांजा। जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो, तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुन्नी देह फिर है बिन नावै, ओए खाप खाप मुए करांजा। मेरे मन जाप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत काल जुग पद उत्तम। हर पाइए सतगुर माजा, हौ बलिहारी सतगुर अपने। जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिलियो वड भागी। सब किल बिख गए गवाजा,